0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिस लड़की से आकाश मुझे कंपेयर कर रहा है वो एक लैब ग्रोन लड़की है एंड आई डोंट कंपेयर माय सेल्फ टू गर्ल्स लाइक दैट एंड आई वाज लाइक एक सेकंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर आई नो हु आकाश इज आई नो वो तुझे किससे कंपेयर कर रहा है लेकिन लैब ग्रोन एंड दैट्स व्हेन माय बेस्टी पिप्ड इन टू टेल मी कि तुझे पता नहीं है व्हाट अ लैब ग्रोन पर्सन इज आई वाज लाइक कि वो लैब में पले बड़े हैं शी वाज लाइक नहीं कि वो नकली है जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं दिखते डायमंड्स हैं लेकिन बनते लैबोरेटरी में हैं इसलिए उनमें वो बात नहीं होती जो डायमंड्स में होती है और वैसे ही जो इंसान दिखता सही है लेकिन अंदर से पूरा फेक और प्रिटेंशियस है वो इंसान होता है एक लैब ग्रोन इंसान अगर आपको ये सुनते ही अपने एक्स की याद आ गई आई डोंट ब्लेम यू डार्लिंग दैट्स व्हाई यू डंप्ड हर बट अगर आप अपने एक्स के बारे में बात करना ही चाहते हो अबाउट द लैब ग्रोन ह्यूमन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vierba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K/5/14A, 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम। सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि आपके पास इतना काम है, इतनी पढ़ाई है, यू हैव नो टाइम टू मीट हिम, बट द ट्रूथ इज आपकी सोसाइटी में एक हॉट गाय आया है एंड यू मच रादर चेज हिम.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर पकड़े गए तो क्या होगा? बट व्हाटएवर होगा, इफ यू वांट रोशिफिकेशन फॉर दिस स्ट्रेंज लिटिल कन्फेशन, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी, वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशि,
2: हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
4: I'm really good. How are you?
2: Really good से थोड़े से better हो, क्योंकि आपने जो मुझे confession लिखकर भेजी है, that is killer AF and I really want to know the whole story.
4: I know, right? Yeah. Actually, मेरा कुछ दिन पहले बहुत ही गंदा breakup हुआ and the reason that I told my boyfriend was कि मेरा ex वापस आ गया मेरी life में, but ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. The story is upside down.
2: Tell me all about it. तो आपने उसे ये क्यों बोला?
4: माँ यार, हाँ बोलो.
2: हाँ तो आपने उसे ये क्यों कहा?
4: ओ भाई, उसकी टॉक्सिक माँ भाई इतनी भसड़ फैला दी उसने मेरी लाइफ में, मैं क्या बताऊँ. खाना उसके अकॉर्डिंग, जीना उसके अकॉर्डिंग, पहनना उसके अकॉर्डिंग, कहीं जाना उसके अकॉर्डिंग. मेरे से तो टैकल ही नहीं हो रहा था यार. इतनी बार अपने बंदे को समझाया कि थोड़ी स्पेस दे, थोड़ी स्पेस दे, बट नहीं, वो भाई चाटू अपनी मम्मी का मान ही नहीं रहा भाई. मेरे से तो नहीं झेला जा रहा था, तो मैंने इस चक्कर में झूठ बोल दिया. लेकिन अब वही है कि अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बट क्या ही बोलूं.
2: सो बेसिकली यू चोज बीइंग सिंगल ओवर बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद योर बॉयफ्रेंड एंड हिज मॉम.
4: सो टॉक्सिक, बिकॉज इतना टाइम हर चीज दूसरे के मुताबिक करना इज सो टॉक्सिक.
2: और ये तो हम स्कूल में भी नहीं करते. तुझे रोशिफाई कर दूं बेब, यू विल फील बेटर.
4: प्लीज डू, प्लीज प्लीज.
2: देयर यू गो,
0: यू've बीन रोशिफाइड.
2: अगली बार बॉयफ्रेंड ढूंढेगी ना, उसके साथ साथ उसकी मम्मी को भी वेट करना बिफोर डेटिंग हिम. एंड बाय वेट आई मीन VET वेट, नॉट WET
4: वेट.
2: थैंक यू सो मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FP. लेट्स गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कॉल मी ओल्ड फैशन्ड और वट एवर, बट मेरे हिसाब से प्यार इजहार करने का तरीका सबसे बेस्ट है व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग इट थ्रू अ चिट्ठी।
1: रोशी के
2: लेटर बॉक्स से।
0: और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है कि आई एम नॉट दी ओनली वन हु फील्स दिस सेंटिमेंट। मैंने आपको कितने हफ्ते पहले कहा था कि लेट्स स्टार्ट अ खतों का सफरनामा, और आप मुझे अपने लवर्स के लिए चिट्ठियां लिखकर भेजते रहते हो, विच आई लव रीडिंग आउट। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड स्कूल रोमांस नेवर रियली गोज आउट ऑफ फैशन, और आपकी चिट्ठियाँ इस बात का प्रूफ हैं। अच्छा तो anyway, तो ये चिट्ठी लिखी है फारिद शेख ने फॉर रिधिमा। मेरी प्यारी रिधिमा, फॉलिंग इन लव विद यू हैज़ बीन द बेस्ट थिंग फॉर मी इन दिस लाइफ। मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत, लविंग और केयरिंग लड़की मुझ जैसे बुद्धू और भोंदू से प्यार कैसे कर सकती है। आई थिंक आई हैव जस्ट बीन लकी। आई प्रोमिस कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा, एंड मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रखूँ, स्माइलिंग रखूँ। एंड प्रोमिस, ये जो रोमांस है ना, जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा फारिद शेख। What a beautiful love letter, Farid. This is so cute. Like, I'm hoping कि काश कोई मेरे लिए भी ऐसी चिट्ठी लिखे। Actually, मैं आपकी इतनी सारी love letters पढ़ती हूँ, आप में से किसी ने मेरे लिए तो कोई love letter नहीं लिखा है। Why don't you change that and send me a love letter for me? मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। So find me on Insta या FB for your love letter to me. And whatever you do, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, एंड आई कैच यू ऑन द अदर साइड।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: शेष।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Wait, what are you saying? Deepika and SRK are shipped together? Ye news mujhe Gurusha ne batai hai, and she has told me that this is a blind piece of news, which basically means iski koi confirmation nahi hai. But Gurusha aur main iske bare mein discuss kar rahe the ki ye kitna amazing hoga, dude. SRK and Deepika. Pehle it was SRK and PC. SRK को भी चिल नहीं है ना जिंदगी में. उन्हें ये नहीं पता है कि एक जॉक है मिर्ची में जो रात के प्रोग्राम करते करते करते लव एंड रोमांस के बारे में बात करते करते ढूंढ रही है. मे बी ही शुड गिव दैट जॉक अ चांस. नहीं, गुरुशा अग्रीज विद मी. पर दीपिका एंड SRK, आर यू गाइज इवन किडिंग मी? अगर आपको लगता है ये न्यूज कैन बी ट्रस्टेड एंड इफ यू थिंक दैट्स ट्रू एंड इफ यू लाइक दिस कपल का थॉट. बट एक सेकेंड, दीपिका का बेबी नहीं होने वाला था? हो नहीं रहा है. It doesn't matter. Whatever your opinion on this blind piece of news is, hit me up and tell me all about it. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Yaar, SRK, RJs ke baare mein bhi soch lo yaar. On that note, tum kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Yabana.
1: Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
4: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
4: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ प्रॉब्लम क्या है?
4: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
4: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
4: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
4: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
4: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
4: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
4: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
4: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
4: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
4: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
4: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई, मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
4: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
4: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
4: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट पका।
5: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे तो जिंदगी में वी ऑल लाइक गेटिंग एडवेंचरस, और एडवेंचर के नाम पर देयर इज दिस बुक कॉल्ड मदिरा व्हिच टॉक्स अबाउट द रिच कल्चर ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिजीनियस तरीकों से बहुत सारे इनक्रेडिबल स्पाइसेस और फ्लावर्स यूज करके बहुत ही अमेजिंग लोकली प्रोड्यूस्ड वर्जन्स ऑफ कॉकटेल्स हैं. और इसी वजह से, बिकॉज दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग प्रेमिस, मैं पकड़ के लाई हूँ इस किताब के ऑथर पराग शास्त्री को ऑन द मिर्ची हॉटलाइन. वेलकम टू द शो पराग.
3: हाय रोशि,
2: हाउ आर यू?
3: वेरी वेरी गुड, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर.
2: अरे आई एम अ ह्यूज फैन, मैंने आपकी किताब कवर टू कवर पढ़ ली है. और मैं जानना चाहती हूँ कि इसे थोड़ा सा ट्वीक करके, ठीक है, एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉकटेल देखी थी जिसमें मैंगो यूज हुआ था, एंड इट वाज अ मैंगो मार्टिनी, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था. लेकिन अगर मान लीजिए किसी को घर पर बनाना है इसका एक वर्जन अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए, एंड दे डोंट वांट टू मेक इट अ कॉकटेल बट दे वांट टू यूज मैंगो इन अ मोर मॉकटेल वर्जन, तो उसके लिए घर में हमारे पास आम रहते हैं, इम्प्रेस करने की इच्छा रहती है, पर आगे क्या करना है जरा बता दो प्लीज.
3: ओके रोशि, आई विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ऑन दिस, राइट? आई ट्राइड अ न्यू मैंगो कॉकटेल, राइट, मैंगो बेस्ड कॉकटेल लास्ट वीक, राइट? एंड माय ऑडियंस, ऑब्वियसली माय फ्रेंड्स, राइट, सॉर्ट ऑफ लिटरली फेल फॉर इट, राइट? सो आई विल ट्राई एंड टेल यू दैट इट्स ऑब्वियसली मैंगो बेस्ड, सो इट हेल्प्स. हमने क्या किया, हमारे पास आम का अचार था घर में,
2: ओके,
3: राइट? वी टुक आम के अचार के ऊपर जो हल्का सा ऑयल फ्लोट करता है, वी टुक दैट, राइट, मिक्स्ड इट, यू नो, सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड इट विद द चॉइस ऑफ आवर बेस लिक्विड ऑफ व्हाइट, राइट, जो भी था. वी स्क्वीज इन हाफ अ लाइम, राइट, आधा नींबू, राइट, एंड वी डिड अ मैसिव शेक ऑन इट विद लॉट ऑफ आइस, राइट, एंड उसके ऊपर हमने गार्निश किया सम मिंट लीव्स, राइट? यू कुड आल्सो यूज द बेसिल, राइट, वो भी आप कर सकते हैं, बट द फ्लेवर वाज सो फैंटास्टिक, आई कैन टेल यू, राइट? एंड बिकॉज ये फ्लेवर लोगों को पता है, राइट, आम के अचार का फ्लेवर लोगों को पता है, राइट? एंड दैट वॉज सच अ फैसिनेटिंग कॉकटेल दैट केम थ्रू, राइट? वेरी सिंपल, ऑल योर इंग्रेडिएंट्स एट होम, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना है, राइट? इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल बेसिक कॉकटेल, बट अमेजिंग फीडबैक, राइट?

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: रोशी आपने कहा है कि गिव लव अ चांस बट आई हैव हैड 27 ब्रेकअप्स पिछले 24 सालों में तो इसके बारे में क्या करना चाहिए
0: रोशी के डीएम से
2: ये खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा है गुलाम मुस्तफा ने देखिए गुलाम मुस्तफा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई डू से गिव लव अ चांस लेकिन आपके केस में ना हमें ये सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप्स हैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं है कि हमने 24 इयर्स में 27 टाइम्स ब्रेकअप कर लिया रोशी अब मैं क्या करूं अब आपको करना ये है कि जब आप अगली बार एक रिलेशनशिप में जाओ ना उसे रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करना ठीक है इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं कि करा खाया और फिर अगले नूडल्स की तरफ चल पड़े मे बी दैट विल चेंज द वे यू लुक एट लव और अगर आपकी भी जिंदगी में गुलाम मुस्तफा की तरह बहुत ही अनोखे सवाल हैं जो आप किसी और से नहीं पूछ सकते हो मैं तभी तो आपकी जिंदगी में हूँ I am your Broshi. The name is Mirchi Roshi. Naam ke spelling R-O-C-H-I-E. So hit me up on Insta ya FB and we'll get talking about whatever you do. Kahin mat jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.

0: Archie Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान पर मैं प्यार में तुम्हारे दिल पर गोली क्यों मारूंगी जानू जब तुम मेरा दिल तोड़ के चिकना चूर करके दूसरी लड़की को डेट कर रहे होगे तब मैं तुम्हें प्यार से निकल के तुम्हारे दिल पर नहीं तुम्हारे दिमाग में गोली मारूंगी और अपने दिमाग में भी क्योंकि अगर आपका दिमाग मेरी तरह है और आप एक इंसान के कहे हुए फट्टू वर्ड्स पर विश्वास करके उनके एक्शंस को इग्नोर करके ये मान लेते हो कि ये जानू मानू जिंदगी भर का सोलमेट है And then you get let down just like me. I think हमें notes compare कर लेने चाहिए क्योंकि जिंदगी में और मिला ही क्या है experience के अलावा प्यार तो दूर का सपना है जानू But if you're feeling as heartbroken as I am, hit me up Insta पर या FB पर मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम के spelling है R-O-C-H-I-E मैं जानती हूँ कि आप मुझे hit me up नहीं करना चाहते उसे hit करना चाहते हो लेकिन उससे जेल में चक्की आप ही पीसोगे ना So it's better that you get in touch with me. We continue this conversation and you. कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

0: सर आप तो सॉरी पूरा बता दिए
1: क्या करो भैया कहाँ
0: क्या सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
1: बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
0: आई एम सो सॉरी सर ऐसी कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
0: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या?
0: I'm so sorry सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
1: पागल
0: अब तो देने पड़ेंगे सर
1: हेलो
0: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने
1: पड़ेंगे
0: कौन बोल रहा है विपिन नहीं सर अब तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
1: पागल के दिमाग खराब है क्या पैसे देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे
0: अब तो फंस गए सर
1: हेलो
0: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया है
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
0: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं हाँ जी
0: अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि आपके पास इतना काम है, इतनी पढ़ाई है, यू हैव नो टाइम टू मीट हिम, बट द ट्रूथ इज आपकी सोसाइटी में एक हॉट गाय आया है एंड यू मच रादर चेज हिम.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर पकड़े गए तो क्या होगा? बट व्हाटएवर होगा, इफ यू वांट रोशिफिकेशन फॉर दिस स्ट्रेंज लिटिल कन्फेशन, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी, वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
4: I'm really good. How are you?
2: Really good से थोड़े से better हो, क्योंकि आपने जो मुझे confession लिखकर भेजी है, that is killer AF and I really want to know the whole story.
4: I know, right? Actually, मेरा कुछ दिन पहले बहुत ही गंदा ब्रेकअप हुआ एंड द रीजन दैट आई टोल्ड माय बॉयफ्रेंड वाज कि मेरा एक्स वापस आ गया मेरी लाइफ में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. द स्टोरी इज अपसाइड डाउन.
2: टेल मी ऑल अबाउट इट. तो आपने उसे ये क्यों बोला?
4: माँ यार, हाँ बोलो.
2: हाँ, तो आपने उसे ये क्यों कहा?
4: ओ भाई, उसकी टॉक्सिक माँ, भाई इतनी भसर फैला दी उसने मेरी लाइफ में, मैं क्या बताऊँ. खाना उसके अकॉर्डिंग, जीना उसके अकॉर्डिंग, पहनना उसके अकॉर्डिंग, कहीं जाना उसके अकॉर्डिंग. मेरे से तो टैकल ही नहीं हो रहा था यार. इतनी बार अपने बंदे को समझाया कि थोड़ी स्पेस दे, थोड़ी स्पेस दे, बट नहीं, वो भाई चाटू अपनी मम्मी का मान ही नहीं रहा भाई. मेरे से तो नहीं झेला जा रहा था, तो मैंने इस चक्कर में झूठ बोल दिया. लेकिन अब वही है कि अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बट क्या ही बोलू.
2: सो बेसिकली यू चोज बीइंग सिंगल ओवर बीइंग इन अ relationship with your boyfriend and his mom.
4: So toxic, because itna time har cheez dusre ke mutabik karna is so toxic.
2: Aur ye to hum school mein bhi nahi karte. Tujhe roshify kar do babe, you'll feel better.
4: Please do, please, please, please.
2: There you go.
0: You've been roshified.
2: Agli baar boyfriend dhoondegi na, uske saath saath uski mummy ko bhi vet karna before dating him. And by vet I mean VET, wet, not WET.
4: Of course I got it.
2: Thank you so much, mystery caller. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही mystery caller की तरह कोई confession है, hit me up on Insta या FP. Let's get talking. And while you do that, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैं हूँ ना। ये पिक्चर कोई खास नहीं थी लेकिन ये डायलॉग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो देयर इज दिस गाय दैट आई एम क्रशिंग ऑन और आज उसका फोन आया एंड सेड यार ऑफिस जाने से पहले मिलते हो जाएगी, आई एम हैविंग अ काइंड ऑफ बैड डे एट वर्क। तो मैं मिलने गई उसे, हमने कॉफी पी एंड ही सेड कि यार पता नहीं कई बार लगता है कि शायद गलत नौकरी में हूँ मैं। एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, अगर तुझे ऐसा लगता है तो छोड़ दे अपनी नौकरी। एंड ही सेड कि जब तक दूसरी नौकरी मिलेगी तब तक खाना कैसे खाऊंगा। तो आई सेड यार मेरे घर में खाना बनता है, और एक महीने नहीं, छः महीने नहीं, एक साल, दो साल, तीन साल, जब तक यू फाइंड द जॉब ऑफ योर ड्रीम्स, मैं हूँ ना, आई मेक श्योर कि तू भूखा नहीं सोएगा। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ही सेड रोशी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा दैट आई विल डिपेंड ऑन अनदर पर्सन टू फुलफिल मी, लेकिन द फैक्ट कि तूने ऐसा कहा है ना, इट काइंड ऑफ गिव्स मी रीजन टू जस्ट गो बैक एंड गिव माई जॉब अनदर शॉट। एंड आई वॉज लाइक मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कहा है, लेकिन हाँ मुझे पता है दैट आई मेंट इट फ्रॉम माई हार्ट एंड ही फेल्ट इट फ्रॉम हिज हार्ट। कई बार एक छोटा सा डायलॉग मैं हूँ ना एक रिलेशनशिप को कितना डीप सीमेंट कर देता है ना। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ये नहीं कहा है एंड यू रियली फील इट, आई थिंक यू शुड से इट। आपके रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ आ जाएगा, आई प्रॉमिस। और आपके रिलेशनशिप में कोई bhasar.com है ना, देन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड मैं हूँ ना। ऑनेस्टली जिसके पास लव होता है ना उसके पास सब होता है, एंड आई love you load।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है आजकल कंटेंट भी रील्स भी सॉन्ग्स भी शोज भी हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं। पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है, बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिदम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं। और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉक 20 एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट अप गाना नंबर 20। देखो शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है। This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai. Number 20.

एतबार। कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल। लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में A.R. रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना, उसका बना, सका बना. क्या बना? मुर्गा, मुर्गा. नवीन वाला मुर्गा. Mirchi मुर्गा.
2: हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज.
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ. ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में. मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं.
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान. ये 1 महीने तक कम से कम.
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं. अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना.
3: बोलो.
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है.
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं.
3: अच्छा.
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ. बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे. कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो. ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की.
3: ओके. मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार. उसमें काम करना. कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है.
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो. 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी.
3: अच्छा.
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा. नहीं नहीं नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना. खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा.
3: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा.
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप. 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको. इससे ज्यादा और क्या करें यार.
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा? रिस्क कौन लेगा? ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है.
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे.
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से.
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी. कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है.
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था. उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है. घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो. तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था.
3: यार यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पक्का.
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 14.

0: Tera Ho Jaun, a typically Sachin Jigar song with Junita Gandhi and Stebin Ben. And Arijit ke retirement ke baad, thank God, new voices are emerging. Varna har hero ki ek hi awaaz hua karti thi. वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, ना दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कंप्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स, ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर वाज ऑन। इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है। What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, because for one moment वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सरवाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल। दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

वहीं दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए. And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्यार करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

Tuhi Dasda has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, and today I want to tell you something about a book. The story is 2010, Amish Tripathi, and his written book, The Immortals of Melhua, Shiva Trilogy, its first part. And when I took this book the first time, तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए। सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग। और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं। मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती। एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है। लेकिन ये सवाल ही गलत है यार। असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी। Shiva Trilogy, The Immortals of Melhua deserve to be made. लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके। अभी तक वो बंदा आया नहीं था, लेकिन शायद अब आ चुका है। इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद। वो लोग कहाँ हैं, धुरंधर कहाँ हैं और शरारत कहाँ है, आप वो खुद देख लो। नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता। नंबर 1

0: शरारत 13 हफ्ते ऑन नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। इसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी 1971 की फिल्म गुड्डी के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जया बच्चन तब जया भादुरी थी, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी और अमिताभ का इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल था, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अमिताभ जया को पहले एक मैगजीन में एक प्रिंट एड में देख चुके थे और थोड़ी बहुत ऐसे इंक्वायरी भी की थी कि ये लड़की कौन है, जबकि जया ने अमिताभ को नोटिस किया था जब वो पुणे में FTII में पढ़ रही थी और अमिताभ वहां पर किसी काम से आए थे, तो जया को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अच्छा, फिर इनकी पहली फिल्म एज लीड एक्टर्स थी 1972 की एक नजर। फिर जब जंजीर फिल्म में इतने लंबे इतनी भारी आवाज वाले इस नए एक्टर के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, तब जया बच्चन ने उनके साथ काम किया और वहीं से बात जो है देखिए पक्की हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
0: इट्स पटाक। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

राकेश रोशन साहब की एज डायरेक्टर जब पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ये फिल्म थी 1987 की खुदगर्ज और उनकी मन्नत ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। जी नेचुरल हेयर लॉस को कवर करने का अच्छा तरीका। नहीं नहीं, उनका नेचुरल हेयर लॉस नहीं था, उन्होंने वाकई में ऐसी मन्नत मांगी थी। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और फिल्म हो गई सुपरहिट, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे शेव कर लें। लेकिन जब इनकी अगली फिल्म शुरू होने वाली थी ना 1988 की खून भरी मांग, तब उनको एक रात पहले नींद नहीं आई कि यार मैंने एक मन्नत मांगी थी, एक प्रॉमिस किया था ऊपर वाले से, वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुबह सुबह जो सबसे पहला काम कराया वो ये कि बाबर को बुलवा के और अपना सर मुंडवा लिया। उनका ये लुक सबको इतना पसंद आया, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने फिर वैसा ही लुक रख दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Thank you.

0: वो कौन सा पहला गाना था जो सरोज खान ने श्रीदेवी के लिए कोरियोग्राफ किया था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सरोज खान ने शेयर किया था, सुनिए।
1: एक कैमरामैन है अकबर, एक दिन वो मेरे घर पे आए और बोले जाओ हिम्मत वाला पिक्चर देखो, क्या डांस है उसमें, क्या हीरोइन नाची है। बोली सच्ची? बोले देखने लायक है, जा जा देख। और मैं जाके हिम्मत वाला पिक्चर देखी, तो मैं बोली, मैंने कहा काश मुझे भी कोई ऐसी डांसर मिले तो मैं अपना डांस दिखाऊं। घर आए तो मेरे को फोन आया सुभाष जी का, बोले सरोज गाना तैयार है कर्मा के लिए, गाना तैयार है आके ले ले और प्रैक्टिस कर ले, कश्मीर में शूटिंग है। मैंने कहा सुभाष जी आपने बताया नहीं हीरोइन किसको लिया, तो बोले श्रीदेवी को। तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, तो मैं बोली श्रीदेवी मैं अब भी उसका गाना देख के आ रही, सुभाष जी वो नाचेगी मेरे साथ, क्यों नहीं नाचेगी।
0: तो ये शुरुआत कर्मा से हुई, उसके बाद फिर चालबाज, चांदनी, मिस्टर इंडिया, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1971 में एक फिल्म आई थी पराया धन, जिसका सब्जेक्ट, जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें हीरो थे न्यू कमर राकेश रोशन। हालांकि इसमें हीरो का कोई खास रोल नहीं था, मेन रोल हीरोइन का था। हीरोइन थी हेमा मालिनी, वो भी उस टाइम पे रिलेटिवली नई थी। इसमें बलराज साहनी साहब भी थे, लेकिन ये फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजेश खन्ना का पागलपन सवार था लोगों पर। राजेश खन्ना आराधना फिल्म के बाद इतने हिट हो गए थे, ऐसे सेंसेशनल हो गए थे कि उनकी जो फिल्म आ रही थी, अच्छी बुरी गुड एवरेज, लोग देखे जा रहे थे, उन्हीं को हिट कराए जा रहे थे। उस चक्कर में ये जो और अच्छी फिल्में साइड साइड में आ रही थी ना, वो इतनी नहीं चल पा रही थी। ये फिल्म चली थी, बट जितना सक्सेस आई थिंक ये डिजर्व करती थी, उतना इसको उस टाइम पे नहीं मिला। इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, तो इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

बहन भाइयों, 1985 का सुपरहिट गीत जो गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना सुन साहिबा सुन। मिड 80s में दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। लेकिन आपको पता है इस गाने की ट्यून ओरिजिनली मिड 50s में कंपोज हुई थी। जी, शंकर जयकिशन ने ये ट्यून कंपोज की थी अजंता नाम की मूवी के गाने के लिए, जो फिल्म बाद में नहीं बनी थी, राज कपूर साहब की ही वो फिल्म थी। लेकिन ये ट्यून अनयूज्ड पड़ी हुई थी, तो रविंद्र जैन जब राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, इस ट्यून को इस्तेमाल किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। हसरत जयपुरी साहब ने ये गाना लिखा, लता मंगेशकर ने गाया और ये सुपर डुपर हिट हो गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: क्या बना
2: मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो हेलो
5: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
4: हाँ बोलिए
5: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
4: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात
5: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बता दिए।
4: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
5: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
4: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
5: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
4: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
5: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
4: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
5: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
4: पागल पागल है क्या?
5: आप तो देने पड़ेंगे सर।
4: हेलो
5: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
4: कौन बोल रहा है? विपिन?
5: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
4: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे,
5: अब तो फंस गए सर।
4: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।

0: पैसे
1: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अभी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
0: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
1: जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

1987 की फिल्म ईमानदार का एक बहुत पॉपुलर गाना किशोर कुमार की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में जो वर्जन रखा गया था वो उनकी आवाज वाला नहीं था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना था और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है या तेरा ही दर्द छुपा रखा है, आई थिंक दोनों था। एनीवे, सो किशोर कुमार की आवाज में भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फाइनल वर्जन सुरेश वाडकर की आवाज वाला रखा गया था। जिसका रीजन ये सुनने में आता है कि ये इस फिल्म में गाना संजय दत्त पे पिक्चराइज था, एंड संजय दत्त उस टाइम काफी नए थे और सुरेश वाडकर भी उस टाइम नए थे, तो उनकी आवाज संजय दत्त पे ज्यादा सूट कर रही थी एज कम्पेयर टू किशोर कुमार, बिकॉज किशोर कुमार की आवाज तब तक काफी मच्योर, काफी पॉपुलर हो चुकी थी। सो टू गिव दैट नोवेल्टी फैक्टर, सुरेश वाडकर की आवाज वाला जो वर्जन है वो फिल्म में रखा गया। सुरेश वाडकर के साथ इसमें आशा भोसले की आवाज भी है। प्रकाश मेहरा ने ये गाना लिखा है, कम्पोज बाय कल्याण जी आनंद जी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ गाना।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये तो आप जानते हैं ना कि राजेश रोशन ऋतिक रोशन के चाचू हैं। और कुछ टाइम पहले इनकी फैमिली पे जब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी रोशन्स करके, उसके लॉन्च पे ना ऋतिक रोशन ने राजेश रोशन साहब के कंपोज किए हुए गाने के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी, सुनिए।
2: वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। हो मेरी जिंदगी सवारी मुझको।

0: मैंने तो खुदा माना।
1: आहा हा हा, बहुत अच्छा गाया, आगे से नहीं गाना। नहीं, अच्छा गाया, अच्छा गाया। तो यही गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर पुरानी जीन्स विद चारों उंगलियों

रंजीत साहब की एज विलन शुरुआत हुई थी 1970 की फिल्म सावन भादो से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनको इमेंस पॉपुलैरिटी मिली 1971 की फिल्म शर्मीली से, जिसमें उनका बहुत ही ढेंटड़न टाइप का नेगेटिव रोल था। लेकिन इस फिल्म के प्रीमियर पे ना बहुत ही फनी चीज हुई थी। रंजीत साहब की टिपिकल पंजाबी फैमिली, उनका पूरा टब्बर जो है वो फिल्म के प्रीमियर पे आया था। उनका इतना नेगेटिव रोल देख के ना वो इतने अपसेट हो गए कि बीच फिल्म में से उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद जब रंजीत साहब वापस घर गए तो पूरा परिवार गुस्से में बैठा हुआ था उनकी क्लास लेने के लिए कि ये तू की करदा पिया है, ये तेरा काम है। तो इस तरह से उनके विलन वाले करियर की शुरुआत हुई थी। कितनी क्यूट होती है फैमिलीज भाई। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

ओए होए, थोड़ा उदास गाना, लेकिन फिल्म का नाम बड़ा हैप्पी। आप आए बाहर आई, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे याद है इस फिल्म में ना राजेंद्र नाथ जो कॉमेडियन होते हैं उनका नाम विस्की होता है। कि पुरानी फिल्मों में विलन्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जैसे मैं ढूंढ रही थी तो राजेंद्र नाथ साहब का ही नाम फिल्मों में क्या क्या रहा है, पोपटलाल, दीफू, प्यारे, चिंटू, पांडू, झटपट सिंह, विलायती राम, गोपू चंद, मनमौजी। इसी बात पे मौज मस्ती वाला गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा
1: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

तो 1974 की रोटी फिल्म मनमोहन देसाई साहब की पहली फिल्म थी जो कादर खान साहब ने लिखी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कादर खान ने जो इस फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखे ना, वो सुन के देसाई साहब इतने खुश हो गए, उछल पड़े वो, मतलब यहाँ वहाँ कंट्रोल में नहीं आ रहे थे वो। खुशी में उन्होंने कादर खान साहब को एक टेलीविजन गिफ्ट किया, एक घड़ी गिफ्ट की। और जब उनसे पूछा कि आप ये डायलॉग्स लिखने का कितना पैसा लेते हैं, कादर खान साहब ने कहा 21,000 रुपए। तो देसाई साहब ने उनको कहा कि रबिश, आपको 1,21,000 मिलेगा। भाई ऐसे मालदार दिलदार लोग हम सबको जीवन में मिलते रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1984 की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म उत्सव शशि कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। इनफैक्ट जो रोल शशि कपूर साहब ने प्ले किया था ना, वो पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, मतलब उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन किस वजह से वो नहीं कर पाए, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए शशि कपूर साहब ने इस बारे में क्या कहा था।
1: अमिताभ जी काम करने वाले थे क्योंकि पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उनकी हर शेड्यूल, उनका हर प्रोग्राम एक डेढ़ साल आगे गया, तो फिर मैं नहीं उनको ले सका। तो जो मैंने रोल किया है वो रोल एक्चुअली अमित जी करने वाले थे उत्सव में।
0: वेल, बच्चन साहब की सेहत अगर ठीक भी होती तो भी वो इस फिल्म में काम नहीं करते, क्योंकि सिलसिला फिल्म के बाद तो रेखा के साथ काम करने का सिलसिला खत्म हो गया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 1970 का सुपर डुपर हिट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो आन मिलो सजना का ये गाना जो है, इसको शूट करने में ना बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज सूरज ढलने का सनसेट का शॉट लेना था, जो हो ही नहीं पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। फाइनली किसी तरह हुआ और सूरज ढलने पे ना मुझे राहत इंदौरी साहब की दो लाइन याद आ रही है। दिन ढल गया तो रात गुजारने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजारने की आस में, सूरज नदी में डूब गया और हम ग्लास में। ये सबके अपने अपने ग्लास होते हैं। मेरे ग्लास में रात को पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी होती है, उससे कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो कम हो जाता है, नींद आने में मदद मिलती है। ये नींद ना आने की बड़ी भयानक बीमारी सी लग गई है जीवन में।
1: जीवन में न नींद आती है, न मोहब्बत आती है, न कोई आता है, बस याद आती है।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. No pierdo la murga. Mirchi, murga.
1: ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening. My bank to put on.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बता दिए.
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: आप तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे. अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं? हाँ
3: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi.
1: Escaba la buscaba la sacaba la rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची। लोका समय
2: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बच्चों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही उनकी सोच, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की फाउंडेशन बनाते हैं। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्या होता है कि वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। अब कोई क्लास 4 है, 5 में है, 6 में है, 10 में है, वो कह रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं हमारा हुनर क्या है। और उस जगह पे जहाँ पे शायद हमें लगता है कि हमारे हुनर को निखारा जाएगा, हमें कोचिंग मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, उस समय आप अगर कुछ लोगों को ही बढ़ावा देंगे तो हमारा क्या होगा?
4: अगेन, नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी। सी, इसीलिए तो फिर टीचर्स का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेरेंट्स और टीचर्स का। क्योंकि देखो, अभी यहाँ पर वो केवल उनको स्पोर्ट्स से ही अलग नहीं कर रहे हैं, ये कोई डांस या स्पोर्ट्स की बात नहीं है, पर रिजेक्शन।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: जो डीपर इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ा है, आई एम नॉट
3: गुड इनफ, वो बैठ जाएगा,
4: वो चीज बैठ जाएंगी। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट ना, वो जो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं उस समय पर एम्पावर करना, हर एक की विशेषता को देखना, उसको कार्य में लगाना। इसीलिए जो भी हमारे टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाकी सब प्रोफेशंस में यू आर नॉट क्रिएटिंग फ्यूचर जेनरेशन। टीचर एक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप पूरी एक फ्यूचर जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, और आप सिर्फ उनके स्किल टैलेंट को क्रिएट नहीं कर रहे, वो तो वो खुद भी कर लेते हैं। आप उनको कितना इमोशनली स्ट्रांग बना रहे हो, कितना मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, कितने वो ऐसे लोग हैं कि दुनिया में जाकर के किसी भी एडवर्सिटी, किसी भी चैलेंज, किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, और कहेंगे नहीं, ये उस टीचर ने मुझे उस समय ऐसा कहा। सो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द टीचर। बट अगेन आई फील, अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है तो विक्टिम मोड में जाने की जगह, ठीक है ना, विक्टिम मोड में मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी टीचर ऐसा, मेरा स्कूल ऐसा, लुक एट ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव। ये हमेशा हमारे साथ होता है, सब कुछ ठीक होगा। जो एक चीज ठीक नहीं होती ना,
3: उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं,
4: मन वहीं पर जाता है। कुछ ये ऐसा ही है, वो तो तब से कहता है, एडम ईव के समय से पैराडाइज में थे, परफेक्ट था, वेदर परफेक्ट था, सब प्रकार के फ्रूट्स थे, वन फॉरबिडन फ्रूट। तो आपके पास कितनी भी ब्लेसिंग्स हो, बट यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट वन थिंग व्हिच इज नॉट राइट इन योर लाइफ, शिफ्ट।
3: सही बात,
4: प्लीज ब्रिंग दैट शिफ्ट।

0: Because there are a lot of children who are growing up in a very dysfunctional family.
1: हाँ बिल्कुल सही कह
0: रहे हैं. So we can count on our blessings and be grateful.
1: जी जी ये
0: सब कुछ perfect हो बहुत अच्छा है. नहीं हो तो move on.
1: हाँ.
0: Don't get stuck.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी sister श्रेया only on मिर्ची. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: ऋतु है अहमदाबाद से, वो लिखती हैं कि मैं बार बार अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना चाहती हूँ, जैसे सुबह जल्दी उठना या फोन से दूर रहना, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए?
3: दृढ़ता की कमी है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन।
2: जी,
3: सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्टार्ट भी करते हैं। 31 दिसंबर को तो ये खास होता है एक न्यू थॉट, एक न्यू रेजोल्यूशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि दृढ़ता। तो कोई भी एक अच्छा थॉट लेना कि सुबह जल्दी उठना है, वो बीज है। लेकिन बीज ऐसे ही फलीभूत नहीं होता, उसको रोज पानी डालना पड़ता है। तो अगर आपने कोई थॉट लिया भी है, लेकिन अगर आप डिटर्मिंड नहीं होंगे, डिटर्मिनेशन एक पावर है, तो आप जब उस पावर से वो चीज रोज करेंगे तो ही रिजल्ट निकलेगा। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट बींग डिटर्मिंड, देन पुटिंग इट इन टू प्रैक्टिस, देन फेसिंग द चैलेंजेस जो उस रोड पर आएंगे। समझो आप रोज सुबह उठने का ही सोचते हैं, ऑफिस में कोई जरूरी प्रोजेक्ट आ जाएगा, कोई और घर में बात आ जाएंगी, पर उस चीज पर, इसलिए कहा ना डिटर्मिंड, करना है तो करना ही है, कंसिस्टेंट होना, तो वो चीज हो जाएंगे, दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाए।
2: एक काम और कर सकती हैं ऋतु, मेरी तरफ से सजेशन है, एक पॉडकास्ट है, बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट है, जिसका नाम है बियॉन्ड द टू डू लिस्ट। ये अगर आप सुनेंगे तो इससे भी शायद आपको, जैसे कभी कभी सिस्टर कहती हैं कि एक्सटर्नल जब कुछ चीजें आप अच्छी देखते सुनती हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये भी कोशिश करिए, शायद आपके काम आ जाए।
3: आपने बहुत अच्छी बात की कि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो हमें ऐसी चीजें थोड़ा सुनना चाहिए, हम मोटिवेटेड होते हैं। आखिर तो डिटर्मिनेशन की भी जो पावर है वो कहाँ से आएंगे? कोई मोटिवेटिंग फैक्टर तो चाहिए। तो अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करना, ये सारी चीजें हमें वो जैसे एक
2: प्रोत्साहन देती है,
3: पुश का काम करती है।
2: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा तब दिखा पाते हैं जब वो उन्हें सिर्फ जज नहीं समझने की कोशिश भी करते हैं, स्पेशली जब बच्चा परेशान हो। आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस पे एक पेरेंट वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, यार कभी कभी मेरे लिए क्या होता है कि ऐसी बातें जब घर पे होती है ना तो मैं उनको अपनी राय देने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने भी अभी कहा कि बच्चे पॉजिटिव पे ध्यान दो, कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं उस पे ध्यान दो, तो हमें बच्चे चुप करा देते हैं कि मम्मा आई एम फेसिंग इट, नो यू आर नॉट फेसिंग इट, तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है। तो कहते हैं कि पहले तो ये बात भी होती थी, अब तो वो श्रग शोल्डर करके चले जाते कि मम्मा डजन अंडरस्टैंड, डैडी के पास टाइम नहीं, ही डजन अंडरस्टैंड। तो द पेरेंट इज ऑल्सो फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट टाइम कि मैं अपने बच्चे को सही दिशा की तरफ कहां से, उसमें ये माइंडसेट कैसे बैठाऊं कि बेटा दिस इज लाइफ, ऐसा ही होगा, तुमको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव सोच के तुम आगे नहीं बढ़ोगे।
4: जब बीमार होता है ना या बुखार होता है तो खीर भी कड़वी लगती है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: होती तो नहीं है ना। तो जिस समय पर वो बीमार है या दर्द में है और हम उस समय उनको कुछ कहते हैं, दे माई श्रग देयर शोल्डर्स, बट इट इज नॉट कि वो चीज उनको हेल्प नहीं करेगी, रजिस्टर होती है। केवल जो उनका रिस्पॉन्स होता है उस समय वो, बिकॉज दे हर्ट ना उस समय, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग परफेक्ट फॉर देम। अब बीमार है, आप उसको खिचड़ी भी खिलाएंगे तो उसकी हेल्थ को अच्छा ही करेगी। आप उसको कुछ मीठा भी खाने के लिए देंगे, सो जो उसका काम है वो करेगी, जो फूड का नरिशमेंट उसको मिलेगा, लेकिन उसको सब कुछ क्या लगेगा,
3: कड़वा ही लगेगा।
4: तो आप ये कहेंगे ले मैंने तो इतने प्यार से बनाया, मैंने तो इतना मीठा बनाया, और ये देखो इसकी महिमा करने की जगह और ही कह रहे हैं कि ये तो कड़वा है, बीमार है।
3: तो पेरेंट को भी हर्ट में नहीं जाना उस समय, ये नहीं सोचना कि यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपना काम करते जाइए।
4: यस, मना एक पेरेंट को तो बार बार वो चीज कहनी होती है। समटाइम्स जिस समय आप कह रहे हैं वो उतना उसको अगर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मे बी बिकॉज दे आर हर्ट, देन आई ऑलवेज से लुक फॉर द राइट मोमेंट।
3: हाँ बिल्कुल,
4: ऐसे समय जरूर होते हैं कि आप भी स्टेबल हैं, वो भी स्टेबल हैं, हर समय तो कोई हर्ट नहीं होता ना। अभी अभी हो सकता है स्कूल में कोई इंसिडेंट हुआ, वो हर्ट है, आप उसी दिन समझाने की कोशिश करते हैं।
3: सही बात है।
4: आप कहते हैं वो ठीक हो जाए, क्यों? क्योंकि आप पेरेंट्स बच्चों से अटैच्ड होते हैं।
3: हाँ।
4: तो उनकी खुशी में पेरेंट्स की खुशी होती है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो वो सोचते हैं ये कैसे भी करके ठीक हो जाए, क्योंकि ये ठीक है तो हम ठीक हैं।
3: हम ठीक हैं।
4: रादर द होल पॉइंट इज आप ठीक रहो, आप कंफर्टेबल नॉर्मल रहो, एंड व्हेन ही बाउंसेस बैक हैव अ टॉक। और बहुत करके हम नहीं करते बात, हम कहते अभी तो सब ठीक चल रहा है ना।
3: हाँ।
4: चलो जितने दिन ठीक निकल जाते हैं अच्छा है।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
5: Type-C cable के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? Mirchi Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, Only on Mirchi. It's hot.
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: विश्व लिख रहे हैं कि मुझे लाइफ में स्टक फील होता है, जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता तो आप मोटिवेशन कैसे बनाए रखते हैं, इस बारे में बताइए।
4: ऐसे मोमेंट्स हम सबके जीवन में आ जाते हैं, स्टक हम उसको कहते हैं, हमें लगता है कि वी हैव प्लान्ड आवर लाइव्स इन अ सर्टेन वे एंड समटाइम्स इट इज टोटली डिफरेंट
3: फ्रॉम व्हाट वी प्लान्ड।
4: तो हमें कई बार लगता है कि वी आर वेरी स्टक, वी आर नॉट ग्रोइंग। Sometimes I feel those are the exact moments when you're growing.
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: सच में, क्योंकि कई बार आपको ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट में लगती है।
3: लेकिन
4: कभी कभी स्टक होना और चीजें आपके अनुसार न चलना, आपकी जो उस समय पर एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती है वो एक्सेप्टेंस पावर कभी भी नहीं बढ़ती है। तो एक्सेप्टेंस पावर है, अकोमोडेट करने की पावर है, लेट गो करने की पावर है, वो सारी पावर्स कई बार तब बढ़ती हैं जब आप स्टक होते हैं. यू नो, इवन लेटिंग गो दैट लाइफ हैज टू बी दिस वे. हमारी प्लानिंग और डिवाइन प्लानिंग कई बार बहुत अलग होती है.
3: बिल्कुल.
4: और डिवाइन प्लानिंग में जो मैजिक छिपा होता है वो कई बार उस समय हमें नहीं दिख रहा होता. इसलिए फिर वो जो गीता की लाइन है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है. तो उस चीज के ऊपर फेथ रखकर, डोंट टेल योरसेल्फ दैट यू आर स्टक. मे बी थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, दैट्स इट. इट इज जस्ट नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, बट इट इज परफेक्ट.
3: एब्सोल्युटली,
4: इट इज परफेक्ट, एक्यूरेट, एंड देयर इज समथिंग वेरी गुड स्टोर्ड इन दैट.
3: कहते हैं कि लाइफ हैपेंस व्हेन यू बिजी मेकिंग प्लान्स. तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल सब सही है, आप सही जगह पे हैं. यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीडेड टू.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों से उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर बात करने का सही समय कौन सा होता है, क्योंकि हर कॉन्वर्जेशन का एक राइट इमोशनल टाइमिंग होता है। आइए इस कंफ्यूजन को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: शायद ये सोच रहे हैं कि जितने शायद ये होता है कि सब ठीक ही होगा इसलिए सब ठीक है, इंसान इसलिए इस करके उस समय बात नहीं करता। हाँ। क्योंकि जब भी बात करता है तब रिजेक्ट हो जाता है कि भाई, तो उसको लगता है कि अब ठीक है मतलब सब इसकी जिंदगी में सही होगा। हाँ। तो अब बात करने का फायदा
4: बात नहीं है। करे फिर कोई बात निकल जाए फिर इसका मूड खराब हो जाए, बट नो, यू नो द बेस्ट टाइम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इज व्हेन बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, टीचर एंड चिल्ड्रन, बोथ पार्टीज, बोथ पीपल अक्रॉस द टेबल आर इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने, अक्सर ऐसे नहीं सोचते हम।
4: बात रजिस्टर कैसे हो गया, आप देखिए आज पढ़ाई भी है कुछ भी है, अगर आपको उसको अब्सॉर्ब करना है, आप उसपे काम तो बाद में करेंगे पर आपको अब्सॉर्ब करके अगर रिफ्लेक्ट भी करना है
3: जी,
4: तो आपको एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में तो होना चाहिए ना।
3: बिल्कुल।
4: हर्ट चीज पर तो आप अगर स्पिरिट पे लगाओ तो क्या होता है,
3: जलेगा।
4: एनीथिंग दैट इज गुड ऑल्सो फॉर द वुंड, वो भी उस समय जलता है, तो अच्छी बातें भी उस समय अच्छी नहीं लगती है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कुछ सवाल आए हैं सिस्टर श्रेया, तो पहले हैं सुयश लाढ़ा जी हैं पुणे से। वो लिखते हैं कि डर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं या इसे कंट्रोल कैसे करें, जैसे कि किसी अपने को खोने का डर, बीमारी का डर, फेल होने का डर या कुछ बुरा होने का डर। प्लीज हेल्प मी।
2: डर वैसे देखा जाए तो कमजोर मन की निशानी है, क्योंकि जिन चीजों की बातें उन्होंने लिखी है वो सब हमने अक्वायर की है।
1: सही बात है,
2: और वो सब छूटनी है एक ना एक दिन। तो डर उनको छूटने का नहीं है, चाहे वो आपकी खुद की बॉडी है, आपका कोई लव्ड वन है, कोई पोजीशन है, इनमें से कोई भी चीज परमानेंट तो है नहीं।
1: सही बात है,
2: छूट सकती है। इफ आई से कि नहीं नहीं कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, तो ये तो सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि जो चीजें आपने अक्वायर की हैं वो कभी ना कभी छूट सकती हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन दूसरा सत्य ये है कि जो चीजें आपने अक्वायर की है उनको एंजॉय करना जरूरी है। कमजोर मन क्या कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, उनसे अटैच हो रहा है, खोने से पहले अपने मन में देख रहा है कि मैं कहीं ये खो ना दूं, मैं ये कहीं खो ना दूं।
1: सही बात है,
2: ये थॉट उनको डर क्रिएट कर रहा है।
1: हाँ।
2: तो आप पहले इस जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करें कि ये सब चीजें हमने जो अक्वायर की हैं ये पेरिशेबल है, इनमें से कुछ भी छूट सकता है, लेकिन जब तक ये हमारे साथ है क्यों ना हम इसका सुख लें, हम इसको एंजॉय करें, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हैं, चाहे वो हमारा करियर है, हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें और इस थॉट को अपने अंदर से खत्म करें।
1: क्या बात है, वैसे भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जब तक डर से डरोगे, डर आपको उतना ही डराएगा। जिस दिन आप डर को डराओगे उस दिन डर आपसे डरेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: क्या स्कूल में टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स पर भी अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है और क्या एक्सपेक्टेशंस कभी उनके लिए बर्डन बन जाती हैं? आइए इस बारे में जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक बच्चे की तरफ पॉइंट किया जब हम बात कर रहे थे स्कूल के प्रॉब्लम्स को लेके, कि आप उससे पूछिए ये टीचर का पेट है। तो बच्ची जो है वो बहुत हसमुख थी, वो आई बोली मैं टीचर की पेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूँ, मैं पढ़ाई भी अच्छा करती हूँ, तो इनको लगता है मैं टीचर की फेवरेट हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। कहती है कि ये बहुत तकलीफ है कि मुझे इन लोगों को लगता है मैं टीचर की पेट हूँ, कभी कभी इसका भी ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि टीचर के उस पे क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं हर बार लेना नहीं चाहती। तो फिर मैंने दूसरों की तरफ मुड़ के कहा कि देखो यहाँ पे भी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश है। तो हंसने लग गए थे। बट इसमें मुझे जो मूल बात, जो गहरी बात लगी कि जो टीचर के फेवरेट होते हैं वो ज्यादातर बाकी बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन उनपे जो प्रेशर होता है वो खुद उससे जूझ नहीं पाते। कभी कभी उनको बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि वो टीचर के फेवरेट हैं, हर बार सिलेक्ट होते हैं, उनकी मंशा के बारे में कौन सोच रहा है, क्योंकि बाकियों को तो लगता है तो बेस्ट है।
5: ऐसे स्कूल के अंदर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए।
4: ये एक तरीका है बोलने का, फेवरेटिज्म हो रहा नहीं हो रहा है वो
5: ये जरूर बात है कि एक बच्चा अगर कोई आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, सब काम करता है, इट्स अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आप एक टीचर हैं तो आपके भी जो ब्लेसिंग्स हैं उस बच्चे के प्रति रहती हैं।
4: जी।
5: एक बच्चा है जो टीचर को भी तंग करता है, टीचर के बारे में भी बोलता है, यू नो इट्स थोड़ा सा अगर आप बहुत केयरफुल और माइंडफुल नहीं हो तो ये ह्यूमन बिहेवियर की कैटेगरी में आ जाता है। बट एवरी टीचर शुड ट्राई।
4: जी।
5: देखो टीचर का काम है हर एक को एम्पावर करना। मना जो जितना कमजोर है उसको उतना ज्यादा प्यार और अटेंशन चाहिए।
4: वो ज्यादातर होता नहीं, उल्टा होता है।
5: होना तो चाहिए
4: कि ये क्वाइट है, ठीक है, पीछे बैठे रहो तुम।
5: वो एक स्टोरी भी सुनाते थे ना हम लोग पहले सुना करते थे कि वो एक बच्चा था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली ही वॉज इन 5th standard या कुछ, तो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, शैबिली ड्रेस्ड होता था, क्लास में कोने में बैठा रहता था, तो वो टीचर को पसंद नहीं आता था, ज्यादातर डांट खाता था। एंड उसके जो ग्रेड्स को देखते हुए जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी अच्छी नहीं थी।
4: जी, तो मेरे बारे में बात कर रही हैं आप।
5: किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है ये, स्कूल में कहीं पर देखा जाता है। एंड देन टीचर्स डे आया, नॉर्मली आप देखते हैं बच्चे बहुत प्यार से टीचर्स के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं।
4: जी।
5: तो वो बच्चा भी, सब बच्चे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर के आए, रैप करके, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो बच्चा था लास्ट में ये भी आया और उसने भी एक कोई हाफ फिल्ड परफ्यूम की बॉटल थी।
4: अच्छा।
5: और एक थोड़ा टूटा हुआ ब्रेसलेट था जो उसको दिया, तो टीचर को लगा ये कैसा गिफ्ट है ना। स्टिल शी टुक इट एंड देन लेटर दैट टीचर फाउंड आउट फ्रॉम अदर टीचर्स। उसने जब बात करी इतना शाबी है, इसके ग्रेड्स ठीक नहीं है, देखो ये कैसा गिफ्ट दिया है, तो फिर किसी टीचर ने उसको बताया कि व्हेन ही वाज इन 3rd standard ही लॉस्ट हिज मदर एंड फादर जो है अभी ही इज टुक अप टू ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक हो गए हैं, सो देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हिम। एंड जो ये एम्प्टी, हाफ एम्प्टी परफ्यूम बॉटल है प्रॉब्ली ये उसकी मदर की है। सो कुछ जो उसकी स्टोरी बताई, देन द टीचर वेंट बैक एंड शी लुक्ड एट ऑल द ग्रेड्स जो 1st standard, 2nd standard, 3rd में थे, एंड ही वॉज अ वेरी हाई अचीवर, सब कुछ था। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज मदर पास्ड अवे that you know he was behaving in such a manner. I don't really remember the story very carefully, but what touched me was that next day wo perfume laga karke gayi, the child hugged that teacher and said the first time I smelled my mom.
4: Kya baat.
5: So you know यंग बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजर रहे हैं, हर एक के घर में क्या होता है, जब वो एक टीचर के पास आते हैं इट्स लाइक अ सेकंड पेरेंट।
4: बिल्कुल सही।
5: तो उस बच्चे को जज करने के जगह थोड़ा सा अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें उसका पास्ट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, एंड देन दैट टीचर स्टार्टेड पेइंग अटेंशन ऑन दैट चाइल्ड And then he started doing well again. And they became so close that on his wedding, he called that teacher and she came wearing that bracelet.
4: Kya baat,
5: the same bracelet.
4: Khubsurat.
5: So, the whole thing was ki usme us teacher ne kaha ki hota to hum hai ki hum bachchon ko sikhaye. But actually, ye bachcha mere jeevan mein mujhe sikhane ke nimit bana aur ek mod lane ke nimit bana. I really feel that, you know, all souls are going through a lot and every teacher need to try and understand ki wo bachcha kis cheez se guzar raha hai.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: डॉक्टर सुरिल दवे हैं, अहमदाबाद से लिखते हैं। हाय सिस्टर श्रेया एंड विशाल सर, पहली बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा नाम विशाल सेठिया है, विशाल सर नहीं है। सिस्टर श्रेया आप जरूर पुकार सकते हैं इनको, प्लीज मुझे विशाल कहें। वो लिखते हैं कि मैं पिछले 2 महीनों से एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं। अभी कुछ टाइम से मेरी मैनेजर काम करने का तरीका जो उनका है वो पूरी तरह से बदल रही हैं। पहले वो मुझे काम का एक तरीका समझाती हैं, फिर दिन के एंड में कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें दूसरे तरीके से करना चाहिए था। इस बात पर वो मुझे ताने भी देती हैं और क्रिटिसाइज भी करती हैं, जो मुझे मेंटली अफेक्ट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
5: किसी के साथ भी हम काम करते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है
4: जी,
5: नहीं तो वो हमारे काम पर इम्पैक्ट करता है। और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो एक स्टेबल माइंड होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता मेंटली
4: बिल्कुल
5: थोड़ा भी
4: परेशान
5: रहना, बिकॉज सी एज अ डॉक्टर हर एक को समझना है कि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं
4: जी।
5: कई बार अपने लव्ड वंस को पूरा का पूरा आपके आगे सरेंडर कर देते हैं। तो हमारे लिए काम स्टेबल होना, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो जो एक रिलेशनशिप है आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि वो बहुत टॉक्सिक है, आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी अगर वो शिफ्ट नहीं आ रहा है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, देन मे बी यू कैन ट्राई working at another place also, but वो last option हम रखते
4: जी,
5: हैं।
4: बिल्कुल।
5: पहला option हमेशा conversation का होता है कि हम उनको समझने की कोशिश करें। अब इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज कभी कभी होती है तो समझ में आता है,
4: सही बात है।
5: अगर ये daily हो रही है
4: सो
5: देन इट इज नॉट वर्किंग स्टाइल, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है।
4: राइट।
5: आप कई बार देखिए वर्किंग स्टाइल में आपके अंदर कोई कमी या गलती है तो महीने में 4 बार वो बात होगी, 2 बार वो बात होगी, मुझे आपका कुछ ठीक नहीं लग रहा।
4: लेकिन रोजाना नहीं हो रहा।
5: लेकिन अगर रोजाना हो रहा है तो मुझे आप ठीक नहीं लग रहे।
4: सही बात है,
5: दोनों में बहुत फर्क है। आप ही ठीक नहीं लग रहे हैं तो देन आई फिगर आउट सम वे कि आपको कुछ ना कुछ नहीं, मैं कुछ ना कुछ आपसे लड़ने के लिए या आपको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई भी तरीका कोई भी बात उठा लेती हूँ। तो थोड़ा डीप में जाएं, क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, कोई पहले का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, रिजोल्व करने की कोशिश करें।
4: और शायद जो आपने कहा ना, जो छोड़ना है वो शायद आखिरी कदम है, उसके पहले शायद एक कदम और है। आपने बहुत पहले एक बहुत कमाल की बात कही थी कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा होगा, तो उसमें कह सकते हैं कि इस वक्त मैं तेरे ताने भी सह लूंगा, खराब है मेरा वक्त ये सोच कर रह लूंगा।
5: खराब है वक्त न कह कर के, आपको पता है कभी कभी अगर हम किसी डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं हम कितने स्ट्रांग बन जाते हैं। एक्चुअली
4: बिल्कुल,
5: अगर हम चाहे तो उसका शुक्रिया कर सकते हैं कि आपके ऐसे बिहेवियर से मेरा खराब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी इतनी रेजिलियंस बढ़ गई कि अब तो मैं किसी के साथ भी काम कर सकता
4: हूँ। वो कहते हैं कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, बहुत सही बात।
5: बट देन यू नो अगेन व्हाई आई से इज एक्चुअली वी शुड नेवर नेवर थिंक ऑफ लीविंग अनटिल एंड अनलेस इट इज अनएथिकल।
4: राइट।
5: बट कभी कभी नाउ इट हैज स्टार्टेड टेकिंग सच अ टोल ऑन पीपल, इतना ज्यादा कि वो एक्सट्रीम तक सोच लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड कमिट करने का सोच लेंगे। अभी सुसाइड्स भी कई बार आप क्या सोचते हैं, 23 ईयर ओल्ड था, 24 ईयर ओल्ड था, बिल्कुल ठीक ठाक था, मीटिंग में था, अचानक ऐसा हो गया। सो उतना एक्सट्रीम में जाने से तो फिर आप वर्क शिफ्ट कर लें, और नहीं तो फिर आप उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें।
4: जी
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my beautiful Desi people. This is your girl Priscilla. And yes, chai garam, coffee garam aur baate garma garam lekar aa chuki hu. Mirchi Mornings shuru ho chuka hai. So whether you're stuck in traffic, pretending to work from home while actually hunting for a second coffee, ya phir just missing that cutting chai vibe from back home, consider me your daily dose of music, masti and much more. Aur abhi honestly, yaar, ye life jo hai aajkal badi wild chal rahi hai. Ek side par LinkedIn professionalism chal raha hai, dusri side par mom ke messages bhi saath mein chal rahe hain. Aur aaj ke show mein kya chalne wala hai? Full on Bollywood ka gossip hone wala hai. Feel good vibes to rehti hai hamesha. Music that is banger. एंड साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है मेरी मधुर आवाज में, यानी कि प्रिसिला तुम्हारे साथ में है. मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो. फटाफट से मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. फिलहाल गर्मा गर्म बैंगर्स चलाते तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पे जान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना।

0: डा नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना, खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
0: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
0: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
0: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
1: नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
0: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
0: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा है तू?
0: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो माय देसी बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बकल अप, क्योंकि हम चलने वाले हैं आज की डेट में पुराने जमाने में क्या हुआ पता करने। सबसे पहले 1881 क्लारा बार्टन स्टार्टेड द अमेरिकन रेड क्रॉस इन न्यूयॉर्क। देन इन 1904 फीफा वाज फाउंडेड इन पेरिस। और तब से दुनिया में दो टाइप्स के हार्ट ब्रेक्स एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स एंड पेनल्टी शूटआउट्स। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग फ्लू सोलो नॉनस्टॉप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस। एक बंदा एक प्लेन, जीरो वाईफाई, जीरो गूगल मैप्स। भाई हम लोग तो जीपीएस के बावजूद खो जाते हैं। देन 1932 में आइकॉन अलर्ट, अमेलिया एहार्ट बिकेम द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक। और इंडिया की साइड पे 1981 में इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, 1991 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी वॉज असैसिनेटेड in Tamil Nadu. Today is observed as National Anti-Terrorism Day, reminding us how important peace and unity really are. Also, today is World Day for Cultural Diversity, which honestly feels perfect for us Desis abroad, right? ऐसे दोहरी जिंदगी जीते हैं हम देसी लोग। फिलहाल मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टा एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। That's 9033 मिर्ची। It's as simple as that. फिलहाल stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my chai loving people. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग. जरा वेदर का हालचाल सुनने वाले हो. सो अभी फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 59 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स अ बिट क्लाउडी आउटसाइड. थैंक्स टू द विंड इट्स मेकिंग इट फील लाइक 56 डिग्रीज फारेनहाइट. एंड डोंट ट्रस्ट द काम स्काइज टू मच बिकॉज रेन इज एक्सपेक्टेड टूडे अराउंड नून. पिछले 24 घंटों में अराउंड 11 मिलीमीटर्स की बरसात हो चुकी है एंड नेक्स्ट 24 आवर्स कुड ब्रिंग अनदर 3 मिलीमीटर्स की बरसात. So yes, आज के दिन अपने बाल स्ट्रेट करके तो बाहर बिल्कुल मत जाना, वरना बारिश नहीं तो ह्यूमिडिटी से अगेन सामना हो सकता है. आज का टेम्परेचर इज हैंगिंग बिटवीन 58 डिग्रीज फारेनहाइट टू 64 डिग्रीज फारेनहाइट, विच इज वे कूलर देन यस्टरडे. कल का टेम्परेचर ना फुल बॉलीवुड प्लॉट ट्विस्ट टाइप था. फ्रॉम 64 डिग्रीज फारेनहाइट इट वेंट ऑल द वे टू 93 डिग्रीज फारेनहाइट. मतलब एक ही दिन में यू आर ड्रिंकिंग आइस्ड कॉफी एंड साथ साथ में अदरक वाली गर्मा गर्म चाय इन योर ब्लैंकेट. That's the weather for you today. अभी फिलहाल बाहर निकलते वक्त क्लियर के प्लेयर बनना जरूरी है, साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाओ और ढेर सारा पानी पियो. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड मिर्चीदार गाने सुनने के लिए मिर्ची को अपने साथ रखो. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Biscuit Mirchi.
1: Iskabara, uskabara, sakabara. Rabbala. Burga, burga. La virbala burga. Mirchi burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A, 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: डिटेल मांगे जा रहे हो।

0: रहा है आप, अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
1: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ कभी मुर्गा बने इससे पहले आप दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एंड ऑनेस्टली देसी ऑडियंस जो है ना वो रिलेशनशिप के टाइमलाइंस को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो PhD का रिसर्च प्रोजेक्ट हो. एंड क्योंकि हम प्रपोजल, एंगेजमेंट, शादी और थोड़ी सी ड्रामा की बात कर ही रहे हैं, तो शाउट आउट टू RK Jewels जो तुम्हारे लिए ऐसे ऑफर्स लेकर आए ना जो कि डेंजरस इन्फॉर्मेशन हो सकता है अगर तुम सीक्रेटली अपना प्रपोजल प्लान कर रहे हो. बिकॉज यहाँ पर जाकर तुम इमोशनली इम्पल्सिव शॉपिंग तो कर ही लोगे, बिकॉज ऑफर्स इतने अमेजिंग है. ऑफर पता क्या है, दे आर गिविंग यू रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस विथ जीरो लेबर charges and zero extra charges. यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रियल डायमंड ज्वेलरी मिल रही है at real price, no extra charges. तो वहां जाओगे तो एक रिंग तो पक्का से बनती है अपने सीक्रेट प्रपोजल प्रैक्टिस के लिए. और अगर बैकग्राउंड में बजाने के लिए तुम्हें गानों की रिकमेंडेशन चाहिए तो वो मैं प्ले करने वाली हूँ अभी. आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. And while you practice your secret proposal, here are some Mirchidhar bangers for you. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रेडिंग एट $4,700, $4,700 पड़ रहे हैं, उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड के प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15% इंडिया से कंपेरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में सस्ते हैं। जी हाँ, गोल्ड के प्राइजेस अमेरिका में 15% हिंदुस्तान से सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स की टीम से आप कनेक्ट करें और गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करते हुए रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड दैट्स इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट फॉर टुडे। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, जी. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is Mirchi Mornings. पर अब time है Mirchi hour का 3 का.
2: Mirchi hour का 3.
1: सबसे पहले रिपोर्ट से सेवरल इंडियंस इन द यूएस हु वर लेड ऑफ बाय मेटा आर एक्सप्लोरिंग लीगल वीजा ऑप्शंस टू स्टे इन द कंट्री व्हाइल सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स. मेनी H-1B वर्कर्स आर रिपोर्टेडली अप्लाइंग टू टेम्पररीली स्विच टू B-2 विजिटर्स वीजा व्हिच कुड बाय देम एक्स्ट्रा टाइम बट अप्रूवल्स कैन स्टिल बी डिफिकल्ट. नंबर टू पर नेपाल इज डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड एज रोमियो जूलियट क्लॉज. इन सिंपल टर्म्स इट्स अ प्रपोजल मेंट टू अवॉइड ऑटोमेटिकली ट्रीटिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन टीनेजर्स close in age as criminal cases. In simple terms, it's a proposal meant to avoid automatically treating consensual relationships between teenagers close in age as criminal cases. The proposed clause could create limited expectations where the age difference is 3 years or less. It's a pretty sensitive topic but very important. And number three, per from cricket, a report claims that MS Dhoni could leave CSK after IPL 2026 because of reported disagreements with management. It's an important reminder though, this is based on reports only and there has been no official confirmation yet. But still, the thought of Dhoni not being part of CSK feels illegal and emotional. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. For this hour, main hoon Priscilla, tumhare saath main in-store expert mujhse कनेक्ट करने के लिए ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vie est pas la burka. Mirchi, burka.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
2: सर I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? जरा पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अभी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर, वो टाइम जहाँ पर हम राशियों की बात करते हैं.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: It is यानी मेष राशि. आज समन क्लोज में टेक द स्टीयरिंग व्हील इन योर लाइफ एंड सरप्राइजिंगली मे बी यू शुड लेट देम. एवरी बैटल डजंट नीड योर टेक टॉक एनर्जी. आज का लकी कलर है चेरी रेड. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. मंडे अलर्ट. स्टॉप ट्रीटिंग योर क्रेडिट कार्ड लाइक इमोशनल सपोर्ट. यूनिवर्स सेज बजट थोड़ा सा टाइटन रखो बिफोर योर बैंक अकाउंट स्टार्ट्स बफरिंग. लकी कलर इज ब्रॉन्ज कलर. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि. फ्रेश स्टार्ट वाइब्स आर loud today. Mental clutter delete ho gaya hai. Now do something bold, exciting, maybe even slightly crazy. Main character mode mein aa jao. Lucky color is electric teal. Lucky number is 29. Cancer yani kark rashi. You are extra intuitive today. Trust your gut, especially when office drama starts smelling fishier than leftover curry in the break room fridge. Lucky color is misty gray. Lucky number is 10. Leo yani ki siya rashi. Leader energy is equal to unmatched. Don't wait for permission today. Start something new and watch people suddenly act like they always believed in you. Lucky color for you is burnt gray. Lucky number is 1. Virgo yani kanya rashi. Career glow up loading. People may see your goals as impossible, but honestly people also thought pineapple on pizza was a good idea. Just ignore them. Lucky color is sapphire. Lucky number is 33. And this was your rashi zone number 1. Rashi zone number 2 lekar यानी बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: कमल हसन साहब, इनके बारे में बात करने के लिए मेरे पास लव्स ही नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब मेरे पास जो लव्स हैं वो इनकी शख्सियत, इनकी अचीवमेंट्स के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकते हैं। ये आर्टिस्ट नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है। ये कुदरत का करिश्मा जब 5-6 साल का था तभी से फिल्मों में काम कर रहा है। इनफैक्ट इनकी पहली फिल्म के लिए इनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। फिर बड़े होकर किस उम्र में इन्होंने फिल्मों में फुल टाइम काम करना शुरू किया, किस तरह रोल्स से इनकी शुरुआत हुई, साउथ में कौन सी लैंग्वेज की फिल्म्स में इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 19 was when I got acting breaks again. I played small roles, villains, comedians, and then comedy, and then from comedy it became the loser who always let his jaw drop, and the girl said, "Oh, you're like a brother to me." That happened for some time, and then suddenly they thought was a good combi. Suddenly I realized Kerala made me a lead role player. By the time I was getting my foot into the Tamil industry, I became a star in Kerala. I think it was 1975-76.
0: तो मतलब जब हिंदी सिनेमा में इनका डेब्यू हुआ 1981 में एक दूजे के लिए फिल्म से, तब तक वो साउथ में ऑलरेडी सुपरस्टार थे, तो एक दूजे के लिए बॉलीवुड में उनकी फर्स्ट फिल्म होगी, बट ओवरऑल उनकी ये 101st फिल्म थी। एक दूजे के लिए का वासु, वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कैरेक्टर्स प्लेड बाय दिस फिनोमिनल एक्टर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: शोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
4: तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो
3: मेरा।
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं।
4: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया। अब ऐसा नाम अगर किसी को मिला हो उनके बारे में मैं करूं बात, मेरी क्या औकात। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूं चारू आपके साथ, कमल हसन साहब। आपको पता है हिंदी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म और अदरवाइज उनकी 101st फिल्म एक दूजे के लिए जब सुपर डुपर हिट हो गई थी, उनको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने रिजेक्ट कर दी या वो नहीं कर पाए। एक बार मनमोहन देसाई साहब भी उनके पास गए थे एक फिल्म लेकर। सुनिए इस इंसिडेंट के बारे में, एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मनमोहन देसाई साहब वाज वेरी अपसेट व्हेन आई इंसिस्टेड ऑन सीइंग अ स्क्रिप्ट, थिंक इट वाज फॉर अ फिल्म कॉल्ड अल्लाह रखा। आई कुड ओनली अपोलोजाइज बिकॉज आई डिडंट मीन एनी डिसरेस्पेक्ट, बट देन ही सेड इवन मिस्टर अमिताभ डजंट आस्क फॉर अ स्क्रिप्ट। माय आंसर वाज दैट प्रोबब्ली इट साउंडेड कॉकी टू हिम, आई सेड ही कैन अफोर्ड नॉट टू आस्क फॉर इट। And I was so excited with him coming that I didn't even offer them tea. So first, this guy doesn't offer me tea, then he asks for script. So there's so many things which went against me. I must have missed many opportunities.
0: In Hindi films, Kamal Hassan sahab ne chahe limited kaam kiya ho, lekin unke kaam ki ek alag hi league hai. Aap sirf 80s ki filmein utha lijiye, Ek Dooje Ke Liye, Sagar, Sadma and Sanam Teri Kasam. Sanam Teri Kasam mein ek ek scene mein kya brilliant hai ye banda. In fact, ek wedding scene mein jo unka dance hai na, mujhe lagta hai wo dance hi pura ka pura paisa vasool hai. Purani Jeans par main hoon Charu aapke saath, aap sun rahe hain Mirchi.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: सारी दुनिया के फिल्मों के सैड क्लाइमेक्स सीन्स एक तरफ और सदमा का सैड क्लाइमेक्स सीन एक तरफा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और उस एक्टर के आगे मैं सर झुकाऊं धोक दूं, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर कमल हसन साहब। पर आपको पता है इसी सैड एंडिंग की वजह से सदमा फिल्म फ्लॉप हो गई थी। एक और वजह ये भी थी कि उस टाइम कमल हसन साहब ने जो हिंदी फिल्में की थी एक दूजे के लिए या सनम तेरी कसम, जिसमें उन्होंने बहुत ब्रिलियंट उछल कूद मचाई थी, उसके बाद इस तरह के रोल में पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: See, the thing is, they complained about Sadma. Sadma's a good film. It's still widely appreciated. But what happened with that film was they were looking for the ek duje ke liye boy. But the boy was already a man. He had 100 films behind him. The image, the fixation they have about this boy, it's like the Hindi cinema was shocked. Are we came to see a dance. We thought he'll do some dance somewhere, and now he does a monkey trick in the end. Yeah, it's very sad. It's a good film. But what about the dance?
0: वैसे सदमा में भी इन्होंने डांस किया था जो तब शायद पब्लिक को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अब अगर आप उसे इस फिल्म में देखें तो बहुत ही अडोरेबल लगेगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: द फिनोमेना कॉल्ड कमल हसन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई 80s में जब हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ, साउथ में तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे और हिंदी फिल्मों में भी फिर सेंसेशन बन गए। तो सागर फिल्म वाज सपोज टू बी डिंपल कपाड़िया कमबैक फिल्म, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी, लेकिन सारी तारीफें ले गए कमल हसन साहब अपने इस रोल के बारे में। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई थॉट इट वाज अ ग्रेट रोल सिंस आई वाज विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट एंड दो आई वाज बिजी When I'm there, I didn't have any other work. So I was there on the set improvising, even when Chintu was there. I used to rehearse while some other scene was going on. I was enjoying myself.
0: लेकिन 80s में ये चंद फिल्में करने के बाद वो हिंदी फिल्मों से थोड़े दूर क्यों हो गए?
1: The only reason is that I have this addiction to completing projects and going on to the next. But by the time you finish a project in Hindi, it's 1.5 years. You lose touch. The clothes you're wearing has gone out of fashion. You reshoot. You've gone fatter, slimmer, or sicker, wiser, whatever. So many things happen in the meanwhile. So you miss out on the point. So it's tedious and frightening.
0: मतलब बॉलीवुड की लेट लतीफी और ढीलापन कमल हसन साहब को सूट नहीं करी, बट थैंक्स टू एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी उनकी कोई भी फिल्म आज हम डब्ड वर्जन में या सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस ट्रेजर ऑफ इंडियन सिनेमा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ऐसा मैंने सुना है कि फिरोज खान साहब इतने शरारती थे, पता है कितने शरारती थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इतने शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन लगता नहीं था, तो हर स्कूल से उनको ऐसे टाटा बाय बाय नमस्ते कर दिया जाता था कि आप प्लीज स्कूल बदल लें। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चूंकि मैं इतना ज़हीन था और हमेशा क्लास में एक दो तीन रहता था, तो ये बहुत ही पोलाइटली कहते थे कि आप दूसरे स्कूल में चले जाएं, हम आपको एक्सपेल नहीं करना चाहते हैं, और आप अच्छा है कि आप दूसरे स्कूल में दाखिल हो जाएं। तो ऐसे मैंने 3 स्कूल बदली किए हैं मेरी कम उम्र में।
0: आ हा हा हा, क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, क्या राइमिंग यूज़ की है, जहीन, एक दो तीन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: हेलो
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
0: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
0: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
0: कितने दिन तक?
1: ये 1 महीने तक कम से कम।
0: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
0: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
0: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
0: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
0: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
0: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
0: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
0: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
0: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
0: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
0: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
0: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
0: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
0: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
0: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
0: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे, वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप के वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, बोला नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की।
0: है ही तारीफ के काबिल भाई। इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी, जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

0: दिल में
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: नूरी फिल्म का गाना। बहुत से लोगों को लगता है कि नूरी फिल्म पूनम ढिल्लों की पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, एज लीड मेन एक्ट्रेस पहली फिल्म थी 1979 की, लेकिन एक्चुअली उनकी पहली फिल्म 1978 की त्रिशूल थी। और इस फिल्म में जब यश चोपड़ा साहब ने उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने को बोला तो क्या था उनका रिएक्शन, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नेक्स्ट थिंग वाज यश जी सेड हम वो ओबेरॉय होटल के स्विमिंग पूल में करने वाले हैं एंड सम बिकिनी दे बॉट फॉर मी। आई सेड आई एम नॉट गोना वेयर दैट। सो आई सेड बिकॉज आई बीन स्विमिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई बीन ए स्विमर अप टू स्टेट लेवल, नेशनल लेवल फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड। फॉर मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, इट्सी बिट्सी वाज अनकंफर्टेबल। सो आई सेड आई विल वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आई एम कंफर्टेबल विद शॉर्ट्स बिकॉज I studied gymnastics in school and I was a sports person, but to suddenly wear this little thingy. So finally after much back and forth they got me, I remember, one full piece, one green color one, and then some shorts wali shorts and then something.
0: Well, ye gana tha gapuchi gapuchi gum gum, nursery rhyme sound karta hai. Sun lete hain purani jeans par, main hu charu aapke saath, aap sun rahe hain mirchi.

और शुरुआत में ही डायरेक्टर चंद्र बरोट और कोरियोग्राफर पीएल राज के बीच में एक छोटा सा झगड़ा, एक डिसएग्रीमेंट हो गया। डायरेक्टर चाहते थे कि इस गाने की वीडियो में हेलेन जी अल्कोहल की एक बॉटल पकड़ें, जबकि कोरियोग्राफर इसके खिलाफ थे। तो डिसाइड ये हुआ कि इस गाने के दो वर्जन शूट हुए, एक जिसमें उनके हाथ में बॉटल थी, एक जिसमें नहीं थी। ये दोनों वर्जन बाद में देखे गए और कोरियोग्राफर फाइनली अग्रीड टू डायरेक्टर्स विजन एंड वर्जन। तो अब अगर हम ये गाना देखते हैं, उसमें हेलेन जी के हाथ में अल्कोहल की बॉटल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और हम समा बांधते हैं यहाँ पर थोड़े और म्यूजिक के साथ ऑन मिर्च।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, 80s 90s में एक टेलीविजन एड आती थी अंडों के ऊपर,
1: मेरे जान मुर्गी के अंडे, ना ना ना ना ना।
0: संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस एड की जो जिंगल की जो ट्यून थी ना, वो एक बहुत पुराने गाने से ली गई थी। इसे कंपोज किया था सी रामचंद्रन ने, लिखा था पीएल संतोषी ने, जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के फादर थे, गाया था खुद कंपोजर सी रामचंद्रन ने, साथ में गीता दत्त, शमशाद बेगम, मीना कपूर की आवाज। ये वाला गाना सॉरी फॉर द पुअर ऑडियो क्वालिटी, लेकिन ये 1947 की फिल्म शहनाई का गाना है, और उस टाइम ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत थी लोगों के दिलों में, और इस गाने में ब्रिटिश कल्चर का सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ाया गया है। इसलिए क्या क्या अतरंगी नगीने छुपे हैं पुराने गानों में भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iscabala, uscabala, sacabala. Yambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
3: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट पटक।
5: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: मुगले आजम फिल्म और मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर का अकबर वाला रोल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बारे में एक बार एक पुराने इंटरव्यू में लेट असरानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में सबको मालूम, अकबर का रोल कर रहे थे, के आसिफ साहब का स्टूडियो, उनका बेटा मिलने आया एक दिन चम्मी कपूर, और इनका मेकअप रूम बंद था पृथ्वीराज जी का, और के आसिफ साहब घूम रहे थे। तो बोला आओ बेटा क्या हुआ। बोले पापा से मिलने हैं। नहीं वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्यों? अभी अकबर नहीं आया उनके अंदर। बोले यार ये क्या अकबर नहीं आया, मतलब क्या, कपड़े तो पहने हुए अकबर के। नहीं वो वेट कर रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा एक्टर और अपना थिएटर चलाते थे, कितने लड़कों को ट्रेन किया, वो आदमी वेट कर रहा कि प्रेरणा इंस्पिरेशन कब आएगी, और क्या से भी वेट करेंगे, आने दो। बेटे को मैंने नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन ऐसा हुआ, नहीं मिलने दिया। फिर एक दिन दरवाजा खुला, बोले अकबर आ गया, अकबर आसिफ चलो
0: भाई। बड़ा पेशेंस और बड़ा वक्त था पुराने लोगों के पास, यूं ही नहीं कल्ट फिल्में बना देते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CIG, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है
1: कह

0: द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको और उनके म्यूजिक को ना उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके सीनियर्स बहुत रिगार्ड और अप्रिशिएट करते थे। सुनिए एक बार लेट नौशाद साहब ने इनके म्यूजिक के बारे में क्या कहा था।
1: मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोजर थे, खासतौर से गजलें जो कंपोज की बहुत ही लाजवाब। मैंने एक दफे उनकी गजल ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करे मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गजल, इतनी पसंद आई मैं मदन साहब के घर गया। मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गजल पे मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे, बेचारा अरे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं। अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज है, तुमने बड़ी अच्छी चीज ये बनाई।
0: वैसे जिस गजल की इन्होंने बात की वो अनपढ़ फिल्म से है, इसी का एक और माइंड ब्लोइंग गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: हमारी इंडस्ट्री को इस तरीके की महिलाओं की और भी ज्यादा जरूरत है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे ट्यून्ड इन हूँ आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिल्म मेकर लाइक मीरा नायर। मतलब भाई, इस मोहतरमा ने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेम से, क्वींस ऑफ कटवे, ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में हमें दी हैं जो बिल्कुल लीक से हटकर रही हैं। इनकी जो स्टोरी लाइन रही है उसमें कोई शूशा, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं रहता है। ये लेजिट बहुत ही रॉ स्टोरीज लेकर आती हैं ऑन स्क्रीन। एंड वन सच अपकमिंग फिल्म ऑफ हर इज अमरी, इंस्पायर्ड बाय द लाइफ एंड आर्ट ऑफ अमृता शेरगिल, जो एक पायनियरिंग वुमन रही है ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया, जिनके बोल्ड एस्थेटिक्स ने उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट्स को एकदम से हिलाकर रख दिया था। बाकी आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म, क्योंकि इसमें अंजलि सिवरामन जो हैं वो अमृता शेरगिल के किरदार में नजर आएंगी, एमिली वॉटसन विल बी प्लेइंग हर मदर, जयदीप अहलावत उनके पिता का किरदार निभाएंगे और साथ ही जिम सार्ब एंड प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में नजर आने वाले हैं। माइंड यू, प्रियंका चोपड़ा ने तो अपने पैसे भी लगाए हैं एज अ प्रोड्यूसर फॉर द मूवी। ऑल्दो फिल्म का रिलीज डेट अभी तक आउट नहीं हुआ है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Escabala, escabala, sacabala. Rabala. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
1: ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening, my thanks for <support. laughs>
1: हाँ बोलिए
2: सर, आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
2: सर आई एम सो सॉरी, पूरा बता दिए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा
2: है? नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: अब
2: तो फंस गए सर।
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
2: जी? अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटाक। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। राजकुमार हिरानी एज अ प्रोड्यूसर अपना फर्स्ट वेब सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, और ये जियो हॉटस्टार पे 3 जुलाई से स्ट्रीम करना शुरू कर जाएगी। सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, जिसमें अरशद वारसी और वीर हिरानी नजर आने वाले हैं। माइंड यू, वीर हिरानी इज गोना मेक हिज डेब्यू, एंड ये हैं राजकुमार हिरानी के साहबजादे। बाकी सीरीज का स्टोरी लाइन अभी तक बाहर नहीं आया है, बट वी डेफिनेटली नो दैट इट इज गोना बी फिल्ड विद ह्यूमर, वॉर्म्थ एंड मैडनेस। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मैं वापस आऊंगा भाई, इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल, इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार पूरी दुनिया कर रही है इन अ वे। वेल, इसका ट्रेलर आ चुका है, जिसको मैंने पर्सनली नहीं देखा एज माय ओन चॉइस, क्योंकि मैं ये फिल्म डायरेक्टली देखना चाहती हूँ इन द थिएटर्स। बट ये जरूर पता है कि मूवी में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रायना और शर्वरी वाघ लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इट इज गोना बी एन ओल्ड स्कूल रोमांस, जिसमें बचपन के प्यार के बिछड़ने की कहानी है बिकॉज ऑफ पार्टीशन। फिल्म के म्यूजिक पे एक बार फिर से ये तिगड़ी आई है साथ, दैट इज एआर रहमान, इरशाद कामिल एंड इम्तियाज अली। सो या, द होप्स आर रियली हाई। सो बॉबी देओल और अनुराग कश्यप के इस फर्स्ट कोलैब के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपकमिंग फिल्म बंदर, जिसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 21 मई को, यानी कि आज। मूवी में बॉबी देओल के अलावा सानिया मल्होत्रा, राजवीर शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले नजर आने वाले हैं। एंड द मूवी इज गोना हिट द थिएटर्स ऑन द 5 जून, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई जिंदगी ने तो बहुत गेम खेल लिए, अब थोड़ा आप मेरे साथ गेम खेलिए यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं हर रोज ढूंढ रही हूँ मिर्ची फिल्म ची। बेसिकली इस कॉन्टेस्ट के जरिए मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालना चाहती हूँ। तो करना कुछ खास नहीं है, आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति पे जाना है, मेरे DMs में स्लाइड करके अपना फोन नंबर मुझे भेजना है और फिर मैं आपको करूंगी कॉल और आपके साथ खेलूंगी ये बॉलीवुड गेम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पे?
3: अनुष्का।
0: हाय अनुष्का, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक और बढ़िया हो जाऊंगी इफ यू विल प्ले दिस गेम विद मी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड का खिलाड़ी किसको बोलते हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो चोरी करते हैं।
3: तीस मार खान
0: की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: कैटरीना कैफ
0: की पहली फिल्म। सोचो।
3: बूम बूम बूम।
0: क्या बात है, ये कहीं से किसी ने प्रॉम्प्ट किया है क्या आपको? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। बूम के मेल लीड एक्टर का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: क्या बात है, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो अपने बेटे के साथ नजर आए थे?
3: बंटी और बबली
0: में लीड एक्ट्रेस कौन है?
3: ऐश्वर्या।
0: नहीं, बट आपने इतना जो गेम खेला है मेरे साथ उसके मद्देनजर मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।

0: यार लाइफ के बोरिंग गेम्स खेल खेल के परेशान हो गए हो तो जरा आओ मेरे साथ गेम खेलो।
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े मैं तो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ यार। बेसिकली इस गेम सेक्शन के जरिए मैं आपसे बोलती हूँ अपना नंबर देने के लिए थ्रू माय इंस्टाग्राम और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद फिर ये गेम का सिलसिला चालू होता है जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालती हूँ यार। सो अभी कुछ देर पहले अनुष्का ने मुझे कॉल किया था, उनसे जो भी सिलसिला चला उसमें ब्रेक लग गया बीच में। अब उस पॉइंट से देयर इज दिस अनदर पर्सन विक्रांत जो मेरे साथ ये गेम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं सर?
3: यस प्लीज।
0: सो वी एंडेड एट बंटी और बबली में लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें उनका नाम टीना था।
3: कुछ होता है।
0: ऑसम। कुछ कुछ होता है के लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है किरण।
3: डर।
0: डर की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: जूही चावला।
0: जूही चावला की एक फिल्म जिसमें

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा।
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं।
3: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हर काना हिट, हर दुनिया गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये सिर्फ गाने नहीं कहानियाँ हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड माय डियर बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने टाइम एंड अगेन अच्छी मूवीज के साथ साथ अच्छे क्या बहुत ज्यादा अच्छे गाने भी दिए हैं हमें, जो अलग लेवल की कहानी अपने साथ लेकर आती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ वैसे ही गानों को डिस्कस कर रही हूँ, तो जरा अपनी लिस्ट रेडी रखिए, कहीं आपकी और मेरी चॉइस सेम ना हो जाए। चलो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द फिल्म काई पोचे। अब नंबर दो पे बात करते हैं दिल चाहता है मूवी से सॉन्ग कैसी है ये रुत के जिसमें, हाँ हाँ हाँ यही वाला गाना। सो दिस मूवी वॉज रिलीज इन द ईयर 2001, फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सैफ अली खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, डिंपल कपाड़िया और सोनाली कुलकर्णी जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। बाकी डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यू फेल इन लव, क्योंकि पर्टिकुलरली ये गाना हमें हर बार वहीं लेकर जाता है जब फूल और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जब हमें बारिश से थोड़ा ज्यादा प्यार हो जाता है और हम हर जगह बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज देखते हैं, इनफैक्ट अपने पेट में भी महसूस करते हैं। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म लुटेरा से सॉन्ग शिकायतें के बारे में। वंस अगेन अमित त्रिवेदी क्रिएटेड हिज मैजिक एंड टॉकिंग अबाउट द फिल्म, ये विक्रमादित्य मोटवानी ने डायरेक्ट किया था, विच रिलीज इन द ईयर 2013, जिसमें रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल्स में थे। ये गाना जो है ना मूवी का सबसे क्रूशियल गाना भी है। बेसिकली इस गाने के थ्रू हम एक चेंज्ड वरुण को देखते हैं जो सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर पाखी के लिए स्टैंड लेना चाहता है अपनी लाइफ में। फिलहाल लिस्ट में और भी दो ऐसे गानों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: फिल्मों के अंदर चलने वाले फिल्म की बात करें।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Well, my dear बाबू मोशाय, time and again हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमें बहुत ही अमेजिंग फिल्में मिली हैं। लेकिन फिल्मों के अंदर भी कुछ फिल्में होती हैं। अब गाने यार, और कुछ गाने ऐसे उभर के आते हैं ना जो अलग लेवल की कहानी खुद में लेकर आते हैं, राइट? और आज पांच कपंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ वैसे ही गानों को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द फिल्म काई पोचे, फिर हमने कैसी है ये रुत की बात की फ्रॉम द फिल्म दिल चाहता है, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट शिकायतें फ्रॉम द फिल्म लुटेरा, अब नंबर चार पे बात करते हैं ऐसे ना देखो फ्रॉम द फिल्म रांझना जो साल 2013 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय, जिसमें धनुष, सोनम कपूर और अभय देओल लीड रोल्स में थे। एंड एआर रहमान का मैजिक तो भाई कूट कूट के भरा हुआ है इस पूरे के पूरे एल्बम में, और इस गाने में पर्टिकुलरली उनकी आवाज, ओ हो हो हो हो हो हो हो हो, मतलब एक तरफ ये गाना हार्ट ब्रेकिंग है, वहीं दूसरी तरफ टूटे हुए दिल को शांत भी कर देता है। एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज अबाउट द थिंग्स जो धनुष का कैरेक्टर कुंदन सोनम कपूर के कैरेक्टर जोया से कहना चाहता है। मूविंग ऑन, नंबर पांच पे बात करते हैं सॉन्ग साहिबा के बारे में फ्रॉम द फिल्म फिलौरी जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय अंशाई लाल, जिसमें अनुष्का शर्मा, सूरज शर्मा और दिलजीत दोसांझ लीड रोल्स में थे। वेल, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज अ स्टोरी ऑफ टू फॉरगॉटन लवर्स, वो लवर्स जो एक साथ रहना तो चाहते थे बट समाज की वजह से रह नहीं पाए, जिसमें एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने साथ होने को कहता है। काफी ज्यादा रिलेटेबल। खैर, मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई ऐसा ही गाना ऐड करना चाहो तो प्लीज मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करो, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। राजकुमार हिरानी एज अ प्रोड्यूसर अपना फर्स्ट वेब सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, और ये जियो हॉटस्टार पे 3 जुलाई से स्ट्रीम करना शुरू कर जाएगी। सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, जिसमें अरशद वारसी और वीर हिरानी नजर आने वाले हैं। माइंड यू, वीर हिरानी इज गोना मेक हिज डेब्यू, एंड ये हैं राजकुमार हिरानी के साहबजादे। बाकी सीरीज का स्टोरी लाइन अभी तक बाहर नहीं आया है, बट वी डेफिनेटली नो दैट इट इज गोना बी फिल्ड विद ह्यूमर, वॉर्म्थ एंड मैडनेस। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मैं वापस आऊंगा भाई, इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल, इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार पूरी दुनिया कर रही है इन अ वे। वेल, इसका ट्रेलर आ चुका है, जिसको मैंने पर्सनली नहीं देखा एज माय ओन चॉइस, क्योंकि मैं ये फिल्म डायरेक्टली देखना चाहती हूँ इन द थिएटर्स। बट ये जरूर पता है कि मूवी में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रायना और शर्वरी वाघ लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इट इज गोना बी एन ओल्ड स्कूल रोमांस, जिसमें बचपन के प्यार के बिछड़ने की कहानी है बिकॉज ऑफ पार्टीशन। फिल्म के म्यूजिक पे एक बार फिर से ये तिगड़ी आई है साथ, दैट इज एआर रहमान, इरशाद कामिल एंड इम्तियाज अली। सो या, द होप्स आर रियली हाई। सो बॉबी देओल और अनुराग कश्यप के इस फर्स्ट कोलैब के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपकमिंग फिल्म बंदर, जिसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 21 मई को, यानी कि आज। मूवी में बॉबी देओल के अलावा सानिया मल्होत्रा, राजवी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले नजर आने वाले हैं। एंड द मूवी इज गोना हिट द थिएटर्स ऑन द 5 जून, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बता ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
0: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
0: अच्छा
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना सोडा,
0: सोडा
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
0: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
0: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
0: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना पकाना नहीं है।
0: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
0: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
0: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
0: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

दोस्तों कुछ जज्बात वक्त नहीं लेते, सीधा दिल से निकल आते। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक थर्सडे में यार एक पुराना गाना जो आज भी दिल के उतने ही करीब है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यार जब भी मैं सोचती हूँ इस गाने के लिरिक्स इतने ब्यूटिफुल है यार, ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को कितना वक्त लगा होगा। तो अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो उसका जवाब है मेरे पास 5 मिनट। बस 5 मिनट में ये पूरा गाना जावेद अख्तर जी ने लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बस कहा था कि एक सिंपल पोएटिक और रिपीटेबल हुक चाहिए, और जावेद साहब ने वो लेजेंडरी लाइन लिख दी सिर्फ 5 मिनट में। और इतना सोलफुल, इतना सॉफ्ट कि गाना बन गया टाइमलेस। तो चलिए, अगर आज आपको कोई स्पेशल याद आ रहा है तो उसी के लिए आपके लिए थ्रोबैक थर्सडे में ये गाना प्ले करने वाली हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: थ्रो बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी से एक रील मोमेंट में मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: Manhattan.
3: Man as me. Hat. Topi. Or mom, what's tan in Hindi?
2: Tan matlab wo dhoop ki chhap.

दोस्तों, एडल्टहुड का भी ना एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ वापस आ जाता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहाँ लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, आप तो सॉरी पूरा बताइए.
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: मैं पागल पागल है क्या?
2: आप तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने
1: पड़ेंगे. कौन बोल
2: रहा है? विपिन. नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब
2: है क्या? पैसे देने पड़ेंगे. अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई? देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं? हाँ जी.
2: अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल.
4: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी लाइफ में सब कुछ सेम लगने लगता है, मतलब सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम गोल्स, पर फिर भी हम थोड़ा पॉज ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या इसे बेटर बना सकते हैं। और अक्सर जवाब होता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा रीथिंक, थोड़ा सा रीसेट और चीज़ें ज़्यादा अलाइन लगने लगती है। आजकल चेंजिंग मार्केट में भी लोग यही कर रहे हैं, जो उनके पास है उसे ही स्मार्टर बनाने की कोशिश। और जब बात घर की आती है तो ये रीथिंक एक स्मार्ट मूव बन सकता है, जिसे हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग। और इसी को सही तरीके से कैसे समझे और कब ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, यही बताने आ रहे हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दोस्तों, जैसे वक्त बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे बॉलीवुड का म्यूजिक फ्लेवर भी बदल रहा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जो 90s एंड 2000s में मेलेडी और लिरिक्स डोमिनेट करते थे, आज के वक्त में प्रोडक्शन, बीट्स और ग्लोबल साउंड इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ चुका है। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी कोई सोलफुल गाना आता है ना, इंस्टेंटली हिट हो जाता है। मतलब ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, इमोशंस अभी भी किंग है। तो आप भी बताना, आप भी कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल मेलेडी पसंद करते हो जो आज के न्यू एज बीट्स को भी बीट करते। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी पसंद की ओल्ड स्कूल मेलेडी ये रही आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है एक एवरग्रीन गाने के पीछे से। जी हां, गाता रहे मेरा दिल। यानी आपने जब ये गाना देखा होगा तो लगा होगा कि वाह क्या हिल्स है, क्या लोकेशन है, फुल पोस्ट कार्ड वाइब्स। देवानंद जी भी गाते हुए पहाड़ों में घूम रहे थे, एकदम केयर फ्री मोड। पर पर्दे के पीछे का सीन ना थोड़ा हटके था। देवानंद को पूरा यकीन दिलाया गया था कि ये जो शूट होने वाला है वो रोहतांग पास पे हो रहा है। रियलिटी चेक तो ये थी कि रोहतांग पास था ही नहीं, लोकेशन असल में 12 किलोमीटर दूर कहीं और ही थी। और जब देवानंद जी को पता चला तो वो बोले कि यार ये क्या था, मतलब गाना चल रहा है गाता रहे मेरा दिल और पर्दे के पीछे डायरेक्टर बोल रहे कि यार चलता है थोड़ा सा झोल, मतलब ये क्या हो रहा है। तो कुछ कभी कभी ना मतलब एक्टर्स को भी इस तरह से समझा बुझा के थोड़ा बहुत उल्लू बनाकर ऐसे लोकेशन पे लेके जाते हैं जो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप समझ गए कि यार लोकेशन भी कभी कभी एक्टिंग करती है और सच इंटरवल के बाद ही रिवील होता है। तो दोस्तों ऐसे पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किस्से अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होली, ओ नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Grabana. Burga, burga. Na vida, la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या हूँ
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: भांग की गोली वो नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही हैं 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची।
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। चार? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सिटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनेस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्सेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मर्जी सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Oh, you're reading a romantic novel. So interesting. Us novel ka naam bhej, main bhi padhna chahta hu. And I'm like, tu ek romantic novel padhna chahta hai? This is a guy I met on a dating app. And I was telling him ki Sarah Adams ki kitabe mujhe kitni pasand hai. Because wo kitni fairy tale type romantic hai. And he said to me ki, मैं भी पढ़ के देखना चाहता हूँ कि उसके बारे में ऐसा क्या है दैट यू फाइंड सो इंटरेस्टिंग. और मैंने खुशी खुशी उसको बता दिया व्हाट द बुक वाज. एंड यू नो व्हाट द नेक्स्ट थिंग ही डिड, अगले दिन उसने मुझे फोटोग्राफ भेजी होल्डिंग दैट बुक. एंड ही वाज लाइक, यू नो, मैं इसे पढ़ के तुझे बताऊंगा कि मेरे फेवरेट चैप्टर्स कौन से थे. एंड आई वाज लाइक, राइट देयर इज अ ग्रीन फ्लैग दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जीवन में ये सीखने लग गई हूँ दैट व्हेन समवन इज ट्रूली इंटरेस्टेड इन यू, वो काफ़ी हट के इंटरेस्टेड और क्यूरियस चीज़ें करते हैं अराउंड यू सो दैट दे कैन एक्चुअली गेट टू नो यू बेटर. और अगर आपकी जिंदगी में ऐसा ही कोई ग्रीन फ्लैग आपको टकरा गया है, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. नहीं, एंड टू डू दैट यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La vida para la burka.
1: Mirchi, burka. ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप वैसे तो इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ाई में, लेकिन जब आप